0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1 000 $ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: संगीत संगीत
3: संगीत रुदि खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
3: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ
3: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ

पोस्ट कर रहा है, बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। ओह माय गॉड, लुक हाउ क्यूट, हाउ क्यूट। वैसे दिखती रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम उसके करीब जाओ। चलो यार, मतलब जॉय।

पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद। रोज मिलना, रोज बातें करना सिर्फ ये प्यार नहीं, प्यार का मतलब तो इससे बहुत गहरा, बहुत डीप है। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, पर अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। मुझे खुशी में ना साथ रखो, बस अपना शरीक है गम कर लो। यूं अकेले बहुत तन्हा तुम हो। दोस्तों और अपनों से आज के दौर में वफा की उम्मीदें, अच्छा बताओ किस जमाने के आदमी तुम हो। लम्हे गुजरे, वक्त बीता, पर ये दिल किसी और का ना हो सका। लोग आते रहे, लोग जाते रहे, पर मेरी आंखों में आज भी तुम हो।

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: एक उम्र ऐसी आती है जब मन साथ जाता है। जब भी कोई चेहरा पास से गुजरता है तो मन भागना शुरू कर देता है, ख्वाब बुनने शुरू कर देता है कि शायद मेरा जीवन साथी ऐसा हो। हम सफर की वो तलाश बहुत लंबी चलती है, द परफेक्ट पर्सन की खोज, और उसमें चाहते हैं हम वो सब गुण, वो सब क्वालिटीज जो शायद इतनी आसानी से एक इंसान में मिल पाना मुश्किल लगता है।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: वो फरिश्ता हो ना फरिश्ते जैसा हो मुझे तलाश है उसकी जो एक आम इंसान मेरे जैसा हो मेरे खुलूस को जो पहचानता हो बस काफी है वो कोई भी हो कहीं भी हो कैसा भी हो अगर कभी रूठ जाऊं तो मुस्कुरा कर मनाए वो ऐसा हो कि अगर बात कहे तो निभा कर दिखाए इरादों में वो अपनी चट्टानों जैसा हो दुखों में हंसने का हुनर भी जानता हो जो ख्वाब देने को कादिर हो मेरी आंखों को मेरी मोहब्बत को पहचान सके वो ऐसा हो

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख, अंधेरी राहों में चमकेगी सूरज की रोशनी, अंगूठे को दस्तखत में बदल कर तो देख, कदमों के तले खुद होगी मंजिलें तेरी, मेरी बातों को नसीहत में बदल कर तो देख, हौसला कम ना होगा तेरा तूफान के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख।

0: चैलेंज कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: एक बहुत इंटरेस्टिंग टेल है रिलेटेड टू द पर्सन हुम वी ऑल टेंड टू इग्नोर एट ऑल द टाइम्स बिकॉज़ वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। मैं बात कर रही हूँ माँ की। कहते हैं जब गॉड माँ को बना रहे थे तो बहुत ओवरटाइम किया। किसी एंजल ने उनसे आकर पूछा कि इतना टाइम इस मूरत पर काम क्यों कर रहे हैं, तो गॉड का आंसर था क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि ये इलास्टिक या प्लास्टिक की नहीं है। शी विल बी एबल टू रन ऑन ब्लैक कॉफी एंड लेफ्ट ओवर्स। एक गोद है जिसमें एक साथ बहुत से बच्चे छुप सकते हैं, और वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको मुझे देनी है 3 pairs of eyes। वेल, बात यही खत्म नहीं होती है, कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ट्रैक्स।

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
4: जी हाँ, यही सोचा था भगवान ने कि एक माँ को मिलेंगी 3 pairs of eyes। अकॉर्डिंग टू गॉड फर्स्ट पेयर था बंद दरवाजे में से भी देख पाने के लिए। जब वो सोचती हैं, वो पूछती हैं कि बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं, हालांकि उन्हें पता होता है इसका आंसर। दूसरा पेयर आंखों का दिया उन्होंने माँ को, बेहद बिगड़े हुए बच्चे को भी अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके दिल में देखने के लिए, विच ओनली शी कैन डू एंड नोबडी एल्स। थर्ड पेयर इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पेयर ऑफ आइज। जब एंजल को गॉड ये बात बता रहे थे तो उस मदर के मॉडल में से कुछ बूंद पानी टपका, एंड ऑल गॉड कुड से वाज कि मैंने इन्हें बनाया और इन्होंने आंसू को, आंसू जिसके जरिए ये अपनी खुशी, दुख, दर्द, अकेलापन और गर्व, ये सब एहसास दिखा देती हैं, क्योंकि ये माँ है।

एक पेंसिल मेकर ने पेंसिल को तैयार कर डिब्बे में डालने से पहले उसे कुछ यूं समझाया कि मैं तुम्हें यानी पेंसिल को दुनिया में भेज रहा हूँ, बट कुछ चीजें हमेशा याद रखना। पहली कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत से अच्छे काम कर सकती हो। दूसरी, वक्त बे वक्त जब तुम्हें शार्पन किया जाएगा तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन वो पेन तुम्हें एक बेटर पेंसिल बनाएगा। और तीसरा कि चाहे तुम्हें किसी भी सरफेस पर चलाया जाए, तुम अपना मार्क जरूर छोड़ना और हालात जो भी हो तुम लिखते रहना।

पेंसिल की जगह पर जरा खुद को रखकर देखें। हर इंसान बहुत पावरफुल है, हर इंसान में एक क्षमता है बहुत से अच्छे काम करने की, जस्ट लाइक अ पेंसिल। शार्पनर की तरह बहुत सी प्रॉब्लम्स आप पर आती हैं टाइम टू टाइम, बट लाइफ के ये टेस्ट आपको एक बेहतर इंसान बनाकर जाते हैं। और एंड में रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हालात कुछ भी हो, अपनी ड्यूटीज को हमेशा निभाते रहें। पेंसिल की इस कहानी से सीखें और जानें कि आप भी बेहद खास हैं और ये लाइफ आपको मिली है एक खास मकसद के लिए।